याज्ञाकरं सर्वबलधारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षांपन मातावन कान्यमार्यतुमान्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतुयुक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबरे आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गैलवीम सैलसु मैनव मे की दे अपगे स्वामी जेसु क्रिसु सुहांसे उदिसाम अपट लेबेवा।